विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो। जोबन के जाल हो के काल हूँ के काल हो के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो। शतरतारी

प्रबल चांड का सकु भारा खौ खट अपहरानत गाए अष्टमाल का सग संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत।

सालु सारंग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीरा खष्टम मेघ।

न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न तामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न पामं अलेखं अपेघं अजूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धरूपं नहि।

रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावह कहूँ बैठ कुरान के गीत गावह कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ योग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पश्चवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव पानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेश भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारड़ू गुड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पछरा मछरा हो कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूँ शैल छाला तरे छत्र तारी कहूँ राज साजं तिराजा तिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछयाद अद्वै विधाता न त्रस्तं न ग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं त्वस्तं अपुते त्व प्रसाद पाधड़ी छंद अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै अनासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता तुरंत सर्वंग प्रकार अनभूत तेजन छिजगात करता सदीव हरता सनादासन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र प्राद नहीं मित्र मात जय कर्म परम नहीं धर्म ध्यान जय नहीं।

छह स्वरूप अखै भंग जय नेत ने तो चरंत भेद जय अलग रूप कथत कतेब जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुन जन अनंत कलिकलप योग साधत दुरंत।

कहूँ पितृ कर्म, कहूँ वेद रीत, कहूँ नृत्य नाच, कहूँ गान गीत, कहूँ करत शास्त्र सिमरत उचार, कई भजत एक पग निराधार, कई नेह देह, कई गेह वास, कई भ्रमत देश देश नहीं उदास, कई जल निवास, कई अगन ताप, कई जपत उर्द लटकंत जाप, कई जपत जो कल्पंग पर्यंत, नहीं तदपतास पायत न अंत, कई करत कोट विद्या विचार, नहीं तदपदिष्ट देखे मुरार, बिन भगत सगत नहीं परत पान, बहु करत होम यर जगत।

अगंज आदि देव है अपंज पंज जानिया भूत भूत है सदा अगंज गंज मानिया देव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध ब्रद दास देव सर्वसाथ है अनाथ नाथ नाथ है अपंज पंज है सदा अगंज गंज गंज है सदीव सिद्ध ब्रदा अनूप रूप स्वरूप है अछिद तेज मानिया सदीव सिद्ध सुधदा प्रताप पत्र जानिया नराग रंग रूप है नर रोग राग रेख है अदोख अदाग अदग है अभूत अपरम अपेख है ना तात मात जात है ना पात चहन वर्ण है अदेख असेख अपेख है सदीव विश्वभर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभर्ण है जमी जमान के विखय सदीव कर्म परम है अद्वैख है अपेख है लेखनाथ जानिया सदीव सर्व ठौर मैं विशेख ज्ञान मानिया न जंत्र मैं न तंत्र मैं न मंत्र बस आवई पुराने कुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म मैं न धर्म मैं न परम मैं बताइया गंज याद देव है कहो सुख सपाइया जिमी जमान के विखै समस्त एक ज्योत है न बाट है न घाट बाट होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान प्रमाण तेज मानिया न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंक है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चूर है न साहु है न साहको कुमार है न नेह है न गेह है न देह कोस बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है।

परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अपंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न पंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, परमार्थ है, न सीत है, न सोच है, न क्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र

दयाल रूप है, अगंज है, अपंज है, अपरम है, अपूत है, अछेद छेद है, सदा अगंज गंज गंज है, अपूत अपेख है, बली अरूप राग रंग है, न द्वैख है, न पेघ है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिन्ह पर्ण है, बेअंत है, अनंत तेज जानिया, अभूत अपिज है, सदा छिज तेज मानिया, न याद है, न ब्याद है, अगाद रूप लेखिया, अदोग है, अदाग है, अच्छा प्रताप पेखिया, न कर्म है, न अपर्म है, न धर्म को प्रभाव है, न यंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है।

गजाधपी नरातपी करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति बनस्तपी जपस सदा अगस्त याद जे बडे तपस्तपी बसेखिया बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया अगाध आदि देवकी अनाद पात मानिया न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिया सदीव सर्व लोग के कृपाल ख्याल मैं।

रच दीनी। काहूँ फूल राजा हुए बैठा, काहूँ समट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे अस तुजतौ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहा।

हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अद्वुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशत फल पावे, सोई दुख नाथ सह ब्यापत कोई अड़ल।

करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान कर।

आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तो है बखान।

0: दोहरा नमस्कार श्री खड़ग को
1: करो स्वर्ग चितलाय पूरन करो ग्रंथ तुम करो सहाय त्रिपंगी छंद श्री

भैव चिन्ह फिरा सिर भार, भैव च राजा धर्म द्वार, भैव सूरज भैव चंद, कह करोड़ी चलत न अंत, भैव सिद्ध बुद्ध सुरनाद, भैव च आडाने आकाश, भैव जोत महाबल सूर, भैव च आवे जावे पूर, सगलिया पाव लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक।